0: Are you with?
1: Yes, sir. How are you with us? Happy, happy Friday, Christchurch. कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं रेडियो खेजे के साथ. अगर आप जुड़ चुके हैं, कैसे हैं आप सभी का वीक कैसा गया? वेल, हम काफ़ी एक्साइटेड है बिकॉज हर फ्राइडे जब भी हम आपके साथ जुड़ जाते हैं गीतों के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी और चीज़ों की बड़ी बारिश होती है. पर चले बारिश और सुंदरता के बारे में बात आती है तो सिर्फ एक ही नाम हमारे जवान पे आता है, दैट्स आरजे जीबी. हाउ आर यू?
2: आप तो हमेशा काफी अच्छे हो ये सारी चीजों में और बातें बनाने में. बट एक्चुअली आई शुड से हैड अ वेरी स्ट्रेसफुल वीक दिस वीक एंड काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है इन टर्म्स ऑफ आर मंडे टू फ्राइडे जॉब्स एंड द यू नो काम काफी ज्यादा हो गया है. प्लस इतनी सारी चीजें हो रही है, रामायण हो रहा है, एमसी वर्क, रेडियो वर्क, काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है. इतना आसान नहीं है जितना दिखता है या जितना लोग समझते हैं. बहुत सारी चीजें, यू हैव टू वेयर सो मेनी हैट्स टू गेट इट डन. बट वंस यू कम टू फ्राइडे, स्टूडियो पे आ जाते हैं आप लोग, जुड़ जाते हैं, फिर काफी अच्छा लगता है. तो काफी खुश है हम. वैसे हमारे फ्रीक्वेंसी में जो सुन रहे हैं और फेसबुक लाइव पर सुन रहे हैं, उनको कहना चाहते हैं एक और बार गुजरात की मिठास और केरला के तीखे अंदाज के साथ आपकी प्यारी, आपकी दुलारी, सीधी सादी बोली वाली आरजे जिबी और फीजी के खट्टे चटक मटक के साथ आपके आरजे क्रिश आपका रेडियो केजे लोकल पर स्वागत करना चाहते हैं.
1: चटक ब्राइट, यू विल गेट इट वन डे. हमारे साथ
2: ब्राइट ऐसे देख के भी फील होना चाहिए ना यार क्रिश जी.
1: क्यों, हम क्यों ब्राइट नहीं है? आपके अगर आपसे आपके अंदर से जो दो बच्चे निकल कर आए हैं ना, आप अगर उनसे पूछोगे कि आपके लिए दुनिया में सबसे स्मार्ट कौन है, वो सिर्फ मेरे ही नाम बोलेंगे.
2: हाँ, वो तो आपको ही स्मार्ट बोलेंगे क्योंकि ऐसे लबड़ चबड़ चीजें सिर्फ आपको ही आती है, हमको तो नहीं आती है.
1: भाई, स्मार्टनेस का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में स्मार्ट हो. स्मार्टनेस का ये कि जनरल नॉलेज किसका कितना होता है.
2: मतलब आप हमें DUM भी बोल रहे हैं?
1: नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जनरल नॉलेज के बारे में बात आती है तो इसीलिए लोग उसका. एनीवेज, चले हमारे साथ कुछ लोग फेसबुक लाइव पे भी जुड़ चुके हैं. गीतिका जी, मंगत हरी जी, है मंगत ब्रो, हाउ आर यू? निकेश जी उधर वायरू को रेकी रेकी से, शालिन मैथ्यूज ऑल द वे फ्रॉम ओकलैंड. इसके साथ साथ अगर शायद हमने किसी का नाम मिस किया होगा सो वी अपोलोजाइज फॉर दैट. और जी हाँ, बात कर रहे थे कि वीक, चलो लॉन्ग वीकेंड है जी भी, इट्स अ लॉन्ग वीकेंड और मंडे को भी हॉलीडे.
2: अपने लिए कहाँ हॉलीडे क्रिश जी, फिर भी काम करना पड़ेगा. बट या, इट इज अ लॉन्ग वीकेंड. सो आप लोग लॉन्ग वीकेंड में क्या कर रहे हैं हमें बताना. व्हाट्स द प्लान? 3 डेज लॉन्ग वीकेंड, कहाँ जा रहे हो? काफी लोग तो आई थिंक कंट्री से ही निकल गए, जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स अभी फीजी पहुंच गए. सो इट्स सो गुड टू सी यू गाइज ट्रेवलिंग. एंड आप लोग सब लॉन्ग वीकेंड में क्या कर रहे हैं ये बताना. शालिन, इज इट लॉन्ग वीकेंड फॉर यू गाइज एज वेल? यस इट इज, जनरल नॉलेज.
1: एंड हमको इस बार नहीं बोल.
2: By the way, Shalin, what's your plan? If it was long weekend, why are you not here? I think usually you come in Christchurch.
1: Home is in Auckland, na? So of course.
2: Home Auckland. Is in Auckland, but she usually comes when there's a weekend or something. So I'm wondering के ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं आई.
1: Anyways, चले also हमारे जो sponsors हैं इनको भी हम thank you कहना चाहेंगे. शुरुआत करते हैं Eco Travel से. अभी जैसे जीबी जी ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो फीजी, इंडिया कहाँ कहाँ पे घूम रहे हैं, ऐसे जगह पर आप जाते हैं खुद प्लान करके जाना. वेल यस यू कैन, पर कभी कभी क्या होता है कि आप एक एक्सपीरियंस इंसान या ट्रेवल एजेंट से जब बात करते हैं जिनके पास सालों का अनुभव है तो अच्छा होता है. तो इसमें से इको ट्रेवल्स ये नाम जरूर याद रखिए. इमिग्रेशन, यस, इमिग्रेशन का कोई भी काम हो, आप इमिग्रेशन नीड्स फैमिलीज को यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, फैमिलीज यहाँ पर ऑलरेडी है, यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट योर रेसिडेंस या स्टूडेंट वीजा किसी फैमिलीज के लिए, तो इमिग्रेशन

0: नाम जरूर याद रखिए
1: जी हाँ, साथ ही साथ टच एंड ग्लो, जिस तरह कृष जी बात कर रहे थे स्किन केयर के बारे में, स्किन के बारे में, ग्लो के बारे में, टच एंड ग्लो इज द प्लेस. आई थिंक कि कुछ सालों पहले मेकअप ज्यादा रेलेवेंट होता था, मेकअप ज्यादा प्रेवलेंट होता था, लेकिन अब यंगस्टर्स भी, हमारे एज वाले, मिडिल एज, सब लोग स्किन केयर में चले गए. एंड स्किन केयर इज वन थिंग दैट मे हेल्प यू टू have less makeup on your face. ये पता है आपको क्रिश जी? अगर तुम स्किन केयर अच्छे से करो तो तुम्हें उतना ज्यादा मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है.
0: Why do you think इतने सालों में मुझे मेकअप की जरूरत नहीं पड़ी?
1: क्योंकि आप फेयर एंड लवली सालों से इस्तेमाल कर रहे थे.
0: फेयर एंड लवली स्किन
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल. सो ऑल दोज हु आर लिसनिंग, अगर आई नो के हम सबको स्किन केयर के बारे में काफी नॉलेज है, बट ट्रस्ट मी, अगर स्किन केयर आप रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली करोगे तो आपको ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक आईलाइनर और लिपस्टिक लगा लो एंड योर मेकअप इज डन. या
0: उमा आदित्य जी, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं. आई थिंक आप लोगों के द्वारा, गुरुकुल के द्वारा एक अपकमिंग कुछ इवेंट अगर हो, सो प्लीज राइट इट देयर सो देट हमारे बाकी भी जो लोग हैं ये देख सके. जी, आगे बढ़ते हैं टच एंड ग्लो के बाद. एम सी के एन जेड मनीष कम्युनिटी के, जी हाँ, लोरेन जी और रॉबर्ट अन्ना जी शायद ये भी अभी हमारे सामने से चल के ही आज क्रुसेडर्स को देखने जाएंगे, तो इनको भी हम तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं, हमेशा से हमारे साथ, हमारे सपोर्ट में रहे ये. सो लोरिन और रॉबर्ट अन्ना जी, अगर आपको भी ऐसा कुछ केयर की जरूरत है जहां पर आपके फैमिली मेंबर्स है और समबॉडी नीड्स अ राइड और समबॉडी नीड्स टू बी लुक आफ्टर, एम सी केयर, मनीष कम्युनिटी केयर, ये नाम जरूर याद रखिए.
1: जी हाँ, अगर आप घर लेने का सोच रहे और मॉर्गेज के बारे में सोच रहे, क्राइस्टचर्च में आपके लिए ये प्रोसेस इजी कर वाले हैं नेथन मिगलानी जी फ्रॉम स्क्विरल मॉर्गेजेस. सो अगर आपको इजीली मॉर्गेज चाहिए, आपके अभी तो 5% में भी मिल रहा है, एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज. एक्चुअली नेथन जी काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी डालते हैं.
0: वो लेकर आ जाते हैं, उनका 10th of June, ना, फर्स्ट होम बायर्स विद वन रूफ के साथ.
1: यस, फर्स्ट होम बायर्स का उनका सेमिनार भी होने वाला है. सो इफ यू आर अ फर्स्ट होम बायर और नॉट, प्लीज डू गो एंड अटेंड दैट.
0: जी हाँ, और जब हम स्क्विरल मॉर्गेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, साउथ आइलैंड अरिबेंस ये भी हमारे साथ नेक्स्ट वीक फ्राइडे को शामिल हो जाएंगे. सो जब ये यहाँ पर स्टूडियोज में आएंगे आरी जी, और एट द सेम टाइम चलो हम बात कर लेते हैं हमारे अच्छे दोस्त शिवम फ्रॉम एनजेड इंश्योरेंस, नेक्स्ट वीक फ्राइडे को स्टूडियोज में रहेंगे, दे विल गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन. सो अगर आप अगले फ्राइडे को जुड़ोगे, यू विल गेट अ चांस टू हियर अबाउट जो फर्स्ट होम बायर्स के लिए वन रूफ और स्क्विरल साउथ आइलैंड इनके साथ.
1: साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, अगर आप घर खरीदने का या घर बेचने का सोच रहे हो, एक चेहरा जो सिर्फ अपने घर खरीदने और बेचने में माहिर नहीं है बट वीडियोस पोस्ट करने में काफी क्रिएटिव होने में माहिर है, निलाब नजीब जी फ्रॉम हारकोट. सो अगर आप घर बेचने और घर खरीदने का सोच रहे हैं, कॉन्टेक्ट निलाब नजीब जी फ्रॉम हारकोट.
0: पोस्ट अ वीडियो लास्ट वीक वेडनेसडे, नहीं ना?
1: यस यस,
0: मेबी आई मिस्ड इट.
1: यस,
0: चलो आगे बढ़ते हैं. बुकिंग्स, जब बर्थडे पार्टी हो आपके घर पे, बेबी शावर्स हो, कल्चरल इवेंट्स हो, कॉर्पोरेट सेटअप्स हो, एक रिलायबल वेडिंग डेक हो, और इनके साथ साथ अगर आपको अपने किसी इवेंट के लिए, किसी को प्लानिंग के लिए ज़रूरत है, तो फैनफेयर इवेंट प्लानर्स, ये नाम ज़रूर याद रखिए. अभी हमने रिसेंट डेज में देखा, इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स किए हैं जहाँ पर इनके द्वारा, यानी फैनफेयर इवेंट प्लानर्स, इनके द्वारा डेकोरेशन किया गया है.
1: जी हाँ, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, एंड तनु, दैट्स ब्यूटिफुल. तनु कह रही है कि तनु का भी यही स्टाइल है, सिर्फ काजल और लिपस्टिक एंड आईलाइनर, एंड शी इज डन विद हर. Oh, you can't see the messages. Mm. Oh, here. Ah. Kajal, eyeliner and lipstick, and she is done. And that's the beauty. I don't know, Tanu, if you follow any skincare routine or not. If you do, let us know. If you don't, probably you are really blessed with a beautiful...
0: Yeah,
1: apni Tanu Srivastav.
0: Kya? Last week kya ban gaya hai thi ho?
1: Tanu Sharmi, nahi.
0: Sharmila Thakur, na?
1: Tanu, what were you? But yeah,
0: very pretty.
1: You looked so beautiful, Tanu, last week. The hairstyle suited you very well. I think you should do it on a normal day as well. But yeah, if you have a skincare routine, Tanu, do let us know. Nikesh ji keh rahe hain, if anyone wants to do a sponsorship to our team, please Ronal and Party Vairuku, Reki Reki Tamil Nadagam really need some sponsorship, can contact me. Tanu ne kaha, Sid Ashika, Babu missing Fiji very much, Nandi. आपको क्यों मैसेजेस नहीं दिख रहे लोग?
0: पता नहीं, I don't know. Anyways, hey Vicky, welcome bro, कैसे हैं आप? Yes, I think ये जो फोन हमारे सामने usually रहता है, it's doing some trick on us, but don't worry, we can see your messages. चले आगे बढ़ते हैं. पीपी प्रोडक्शन प्रतीक पटेल जी हमारे साथ, हमारे रामायण में भी ये शामिल हो चुके हैं, और अभी रिसेंटली बहुत प्यारे प्यारे वीडियोज हमने इनके द्वारा जो लिए गए हैं या फोटोज लिए गए ये देखे.

0: तो आपको भी अपने इवेंट के लिए एक फोटोग्राफर की जरूरत है, पीपी प्रोडक्शन, ये नाम जरूर याद रखिए।
1: जी हाँ, अगर आप इंडियन आउटफिट्स या यूनिक आउटफिट्स ढूंढ रहे हैं, जैसे हमेशा आप लोग हमसे पूछते हो तुम्हारे आउटफिट्स कहाँ से है, गो टू यूनिक एथनिक कलेक्शन ट्राई तो करो अगर नहीं किया है तो। अगर आपके पास कोई आउटफिट मन में है बट यूनिक में नहीं है, दे कैन स्टिच इट फॉर यू, सो डू गो एंड ट्राई इट आउट।
0: यस, और इसके साथ साथ ग्लोबल फ्रेश, जी हाँ, याद रखिए। शायद मोरिन जी, आप अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा था कि आज आप हमें लाइव सुनेंगे, तो शायद अभी आज ग्लोबल फ्रेश में रेडियो कहे जीबी और क्रिश और म्यूजिक का आवाज गूंज रहा होगा। तो याद रखिए गाइस, वीकेंड स्पेशल्स यहाँ पर रहेगा, आप जा सकते हैं फिजी से फ्रेश वेजेस। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, काफी सारे ऐसे यहाँ पर स्पेशल्स हर वीकेंड रहते हैं, तो ग्लोबल फ्रेश ऑन कॉर्नर ऑफ एनएक्स रोड एंड ब्लेनहम रोड।
1: साथ ही साथ अगर आप पार्टी के बारे में सोच रहे, आपका डेकोरेशन सॉर्टेड है, आपको डीजे चाहिए, ट्रस्ट अस गाइस, पार्टीज में डीजे होता है, साउंड सिस्टम होता है, म्यूजिक होता है, दैट मेक्स द पार्टी रीच टू अनदर लेवल। सो अगर आपको अपने पार्टी को अनदर लेवल में ले जाना है तो कॉन्टैक्ट डीजे गिडियन फ्रॉम डीजे गिडियन अर्बन पैसिफिका। आप इस तरह हमें देख रहे थे,
0: आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, लाइक टू
1: हाउ यू सेड, हमें लगा कि हमने कुछ गलती कर दी है।
0: आई लाइक टू हाउ यू सेड कि डीजे होना कितना जरूरी होता है। पीयूष रस्तोगी जी कैसे हैं, और बबीता आचार्य जी नमस्कार,
1: आपको भी,
0: देवलंगम पिल्ले जी ऑल द वे फ्रॉम लंबासा कैसे हैं। चले आगे बढ़ते हैं, करंट कनेक्ट इलेक्ट्रिकल। अभी हम जब भी फेसबुक खोलते हैं यार, हर दूसरे दिन कोई ना कोई अच्छे टिकाऊ और सर्टिफाइड इलेक्ट्रिक के तलाश में, तो ये नाम जरूर याद रखिए, करंट कनेक्ट इलेक्ट्रिकल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नीले धमलिया जी। नीले भाई, अगर आप सुन रहे हैं भाई, आ जाइए, स्टूडियोज आपका इंतजार कर रहे हैं। नीले जी हमारे साथ फ्राइडे शोज के साथ साथ हमारे संडे शोज में भी शामिल हो चुके हैं, SBG अकाउंटिंग, अच्छे अकाउंटेंट के तलाश में, डेफिनेटली ये नाम जरूर याद रखिए। जी, इससे पहले कि आप ये लेटर पढ़े, चले हमारे पास कुछ समय है और हम अगले सॉन्ग में जाए। टेल अस अबाउट योर स्किन रूटीन, क्या है, व्हाट्स लेके आपने, यू हैव जस्ट touched on it, but I think जैसे आपने कहा है कि it will save people from wearing makeup.
1: Yeah, I mean skin routine में भी, Krishji skin care में भी expensive products हैं and affordable ranges भी हैं. I personally use Korean products, yes, which is affordable and not on the high end.
0: आपका छोटा वाला दिख भी रहा Korean की तरह.
1: हमारा छोटा बेटा, हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा कोरियन दिखता है, पता नहीं क्यों, बट आई एम मोर इनटू अफोर्डेबल रेंजेस देन एक्सपेंसिव रेंजेस। आई वाज इनटू एक्सपेंसिव रेंज, देन आई कट डाउन ऑन माय बजट एंड वेंट इनटू अफोर्डेबल रेंज। एंड हिकोको करके एक वेबसाइट है
0: ऑकलैंड में। अफोर्डेबल रेंज, व्हाट्स अफोर्डेबल रेंज?
1: अफोर्डेबल रेंज फॉर मी इज लेस देन $40 to $30 for one product. And I should say and I should confess that once upon a time hum aisa product use kar rahe the jiska price tha $300 just one product. So I've completely cut down on that, aur us 300 products mein I get my whole skincare routine range. Hikoko, which is one of my favorite. ऑकलैंड में है, इट्स अ कोरियन ब्रांड एंड उसका वेबसाइट जो है यहाँ पर है। एंड क्राइस्टचर्च वालों, गुड न्यूज, हिकोको इज ओपनिंग इन क्राइस्टचर्च वेरी वेरी वेरी सून।
0: यू शुड, दे शुड मेक यू देयर ब्रांड एंबेसडर। यू गॉट द फेस
1: फॉर इट। आई गॉट द फेस फॉर इट, थैंक यू सो मच क्रिश जी।
0: संजय, रीना जी, नमस्कार हम आपको भी, और बाबू कैसे, स्टोरी,
1: आई सेंड सम फोटोज इन योर वाइब। एक्चुअली इनका फोटो, इनका फोन वहां पर है, खत्म होने के बाद हम चेक कर लेंगे कि फोटोज क्या है।
0: ये जो हिकोको ब्रांड आप बोल रहे हो, वेल आपने कोरियन मेंशन किया, आई थिंक वी शुड गेट कोरियन टुडे। एनीवेज, ये प्रोडक्ट डायरेक्ट कोरिया से आता है एंड दिस इज, आप उनके शॉप में जब गए थे, यू नो हाउ वी गो टू मेका एंड ऑल दैट, इन यू गेट दिस, तो इसके अंदर आप जो, व्हेन यू गो देयर यू डू यू गेट दिस लाइक कोरिया वाइब इन देयर, or is it just a normal shop?
1: No, you do get the staff when we went to Auckland was all probably Koreans or Asians as such. कोरियन वाइब आ ही जाता है क्योंकि प्रोडक्ट्स इज नॉट सिमिलर टू व्हाट वी सी ऑन अ एवरीडे बेसिस एज सच। अभी अभी हमारे दोस्त श्रुति और दर्शन जापान जाकर आए एंड श्रुति और दर्शन ने भी जापान में से काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन खरीदा है। बट ऑन अ लॉन्गर रन इट्स ऑलवेज बेटर टू गो इन टू स्किन केयर रैदर देन मेकअप इज वॉट आई वुड ऑलवेज से। आई हैव गॉट अ डे रूटीन एंड अ नाइट रूटीन जो हम रिचुअली फॉलो नहीं कर पाते ड्यू टू द बिजी स्केड्यूल, बट आई ट्राई टू।
0: पीयूष जी, आपने कहा है कि हस्बैंड की पॉकेट तो हमेशा ही कटनी है फॉर मेकअप ब्रो, इन दैट मामला आई टेल यू नेवर। पांच साल से हम साथ में हैं एंड आई थिंक काफी इंडिपेंडेंट है, आई थिंक क्योंकि होता है ना, योर पास्ट एक्सपीरियंस टीचेस यू टू बी, आई वुड नॉट से बेटर, आई मीन इट्स

0: how you are, but it's just past experience teaches you. हाँ, पर I make sure every now and then इनको हमारी तरफ से Whittaker's Kind का जो सबसे favorite chocolate है, fruit and nuts. तो अगर आपको भी studios भेजना है, 154 Madras Street, आप जीवी जी के नाम पे Whittaker's का fruit and nut chocolate भेज सकते हैं.
1: Yeah, I think that's the only thing probably I ask for. Like yeah. हमें पीयूष जी ऐसा नहीं है कि हमें कोई expensive चीजें चाहिए, और अगर चाहिए भी तो हम खुद खरीद लेते हैं. ऐसा नहीं है कि हम कृष जी से बोलते हैं दो पैसे हम खरीद लेंगे. हाँ. कभी कभी मस्ती कर देते हैं कि यार अपना अपना घर बेच दो और किडनी बेच दो ताकि हम सोलो ट्रैवल पे चले जाएं. मस्ती नहीं है, थोड़े बहुत हम सीरियस भी है उस मामले में.
0: बट किडनी नहीं बेचूंगा. एनीवेज, बाबू एंड विकी फिगर स्टिल हियर, व्हाट्स हैपनिंग, आज क्या हो रहा है. जीवी जी हमारे पास, शुड वी गो इन अ सॉन्ग? ओह नो, ओके गाइस, बिफोर जीवी गोज एंड रीड्स दिस, आपने सुना होगा कि हम हमेशा बोलते हैं हमारे शो के दौरान कि क्राइस्टचर्च मेन प्रिजन, क्राइस्टचर्च मेन्स प्रिजन का सबसे फेवरेट हिंदी रेडियो स्टेशन इज रेडियो केजे लोकल. क्यों? क्योंकि हमारा चॉइस ऑफ म्यूजिक, दे लव इट, और इसके साथ साथ प्रॉब्ली हम जिस तरह से प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, और वो बहुत एक्साइटेड है कि हम फ्राइडे और संडे को भी अपना जो शो ये लेकर आ रहे हैं. हमारे एक बहुत ही अच्छे लिसनर एवरी फ्राइडे और संडे को जुड़ जाते हैं, नीरज जी अभी भी फिलहाल के लिए सुन रहे होंगे. इन्होंने हमें कहीं से मैसेज मिला था कि हमें एक लेटर लिखना चाहते हैं. जी भी, आज ये लेटर आया है. चाहते हैं हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए, खासतौर पर से क्राइस्टचर्च मेन प्रिजन से जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए, लेट्स रीड देयर लेटर आउट.
1: सो आज ये लेटर हमें आया है, जिस तरह आपको दिख रहा है ये आया है प्रिजन से. सो इनिशियली हमारे लिए एक लेटर रखा गया हुआ था रेडियो के टीम से, मीडिया के टीम से, कि कृष्ण जी भी एक आपके लिए पोस्ट आया हुआ है. जब हमने देखा ये प्रिजन से आया हुआ है, एंड वी आर लाइक ओके.
0: और सॉरी टू इंटरव्यू, हमारे पास ज्यादा करके ऐसे आते रहते हैं, कभी कभी दूसरे स्पॉन्सर्स की तरफ से, दूसरे जगहों से तो आता है, ऐसे नहीं कि मेल नहीं आता है, बट दिस लुक वेरी डिफरेंट. यस,
1: दिस लुक वेरी डिफरेंट. आप लोग भी हमें मेल भेज सकते हैं, पर ऐसा लेटर मिलना
0: लास्ट टाइम वी रेड अ लेटर,
1: कब हमने ऐसा हैंड रिटन लेटर, आप लोगों ने लास्ट टाइम कब ऐसा हैंड रिटन लेटर लिखा होगा या पढ़ा होगा. सो इट वॉज प्रिटी इमोशनल कि हमारा जो रेडियो है, जो हमारा जो मकसद है, कहीं ना कहीं हम अचीव कर रहे हैं कि नो मैटर जो भी इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, हमारी आवाज़ उन तक पहुंचे, एक चेहरे पे उनकी मुस्कुराहट लेकर आए. तो हम चाहते हैं कि ये लेटर हम आप लोगों के सामने पढ़े. एक्चुअली
0: जी हाँ, बिल्कुल जी भी, वी वांट यू टू रीड द लेटर एंड रीड इट, ताकि हमारे फ्रिक्वेंसी पे भी जो लोग जुड़े हैं. सो गाइस, कुछ देर के लिए स्टे देयर विदाउट एनी नॉइज, लिसन टू दिस लेटर.
1: Hey my bro and Bhabhi ji, how are you guys? Hope this letter finds you well and in good spirit. I'm writing this letter to acknowledge the beautiful work you guys do and the difference you make in my life. Sorry for wasting your precious time out of your busy lives by writing this letter. It's the old way to get in touch with people, but it is the only way possible for me. So without taking much of your time, I would want to say from the bottom of my heart, I thank you both for giving me that 1 hour of joy and happiness on Fridays and now on Sundays. I was really happy when you announced your Sunday show. In this negative environment, I always look forward for Fridays and Sundays together with my mates in here. So thank you once again for the wonderful show you guys bring. May God bless your beautiful family and wish you keep on growing and reaching heights in whatever you do in life. Big shout out to all the combined boys. All the best for this season, my brothers. Lots and lots of love to my boy Nick. I also have a song request, Tere Sang Yara. Enjoy the rest of your week. Best wishes and God bless. Much love and respect, Neeraj from Men's Prison. Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: नीरज भाई, अगर आप सुन रहे हैं, दिस इज वेल, हम काफ़ी दिनों से शोज कर रहे हैं, हमें काफ़ी जगह पर हमें मैसेज किया जाता है, और यू नो कार्ड्स आते हैं इवेंट्स के बाद, और लोग काफ़ी बार हमें हमारा जो खुद का फोटो स्टेज पर से लेकर उसे फ्रेम करके भेजते हैं. वी आर वेरी ब्लेस्ड, पर ऐसा कुछ आई डोंट थिंक हमारे पास कभी ऐसा एक कुछ आया है. सो नीरज, इफ यू आर लिसनिंग ब्रो, डेफिनेटली प्ले दैट सॉन्ग एंड गॉड ब्लेस यू. And we really, really appreciate that you took out, actually. आपने कहा लेटर में कि sorry for wasting your time. Actually, we are thankful that you took out your precious time to write one letter for us.
1: Also, Neeraj ji, I just want to add that इस लेटर में आपने ये भी लिखा है कि आप हमारा रेडियो KJ चैनल आपके मेट्स के साथ सुनते हो. Thank you so much that you're spreading the word about Radio KJ Local and also spreading the smile exactly like

0: love it. Green color kana. Welcome back to Radio KJ Local. You're listening to us on Plains Media 96.9. लौकी के बारे में बात करते हैं तो आज हम बात कर रहे थे कृषि के कजिन्स.
1: आप क्या खाएंगे आज?
0: हम आज खाएंगे जो क्लाइंट मीटिंग है वहीं से मोस्ट प्रोबेबली कुछ खा लेंगे.
1: अच्छा ओके yeah. चलो मंगज जी आप भी हमारे साथ काफी देरों से आई थिंक जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया तब से आप जुड़े हैं जो चलो हमारे साथ. आई नो यार फ्राइडे है हम लाइक यू नो बिजी हो जाते हैं. हमारे पास हमारा खुद का पर्सनल लाइफ बच्चे फैमिली काम होता है. जो सिंगल लोग होते हैं पीयूष जैसे इनको दूसरों को मैसेज करना होता है. मजाक था भाई का मजाक था. पर फिर भी जब भी कुछ लोग हमारे साथ फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड एक घंटा हमारे लिए यार आप सोचिए इस डे एंड टाइम में एक घंटा कितना इम्पोर्टेंट होता है. तो जो जो लोग करते हैं हाथ जोड़कर दिल से शुक्रिया. आपकी प्यारी भाभी रिका जी आ गई है.
0: हम एक्चुअली काफ़ी प्रोफेशनल है रिका जी के साथ क्योंकि वो रामायण में डांस में है. बीच बीच में हमें उनको डांटना पड़ रहा है क्योंकि क्यों डांटती होगा क्या मतलब है. अगर कोई बंदा घर पे प्रैक्टिस ना करे और घर पे प्रैक्टिस किए बिना आए एंड स्टेप्स भूल जाए तो हमें डांटना पड़ता है. वो चाहे ये अप्सरा हो या कोई और अप्सरा हो.
1: एक और अप्सरा का है

0: रिका सोनी सोनी के टेक रुका है और एक अफसरा का लॉस्ट है आज।
1: धावल जी आज सुबह को हम आपके बारे में बात कर रहे थे।
0: लॉन्ग लाइफ
1: ऑनेस्टली आप बहुत लंबा जीने वाले हो धावल जी। आज सुबह हम आपके प्रोफाइल पिक्चर के बारे में बात कर रहे थे वैसे। कल आपने अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया था राइट है ना भाभी जी के साथ। सो
0: भाई इस लड़की के पेट में कोई बात नहीं पड़ती है भाई। भाई धवल जी मैं माफी चाहता हूँ, हम बात कर रहे थे आपके जो गरबा इवेंट्स लाते थे
1: एंड आल्सो क्राइस्टचर्च। गाइस गेट एक्साइटेड, पहला गरबा हो रहा है 26th ऑफ जुलाई को विद द वेरी वर्सटाइल सिंगर ऐश्वर्या। सो प्लीज मार्क द डेट 26th ऑफ जुलाई। धवल जी आपको देखकर गरबा भी हमें याद आ जाता है, आज ही हमारा उस टीम से बात हुआ है। सो डू मार्क द डेट ऑन द कैलेंडर, वी पॉसिबली आर मीटिंग देम दिस वीकेंड, सो वी विल कम बैक विद मोर न्यूज।
0: सोनी के बुलाओ, मंगत जी का मैसेज आया है।
1: मंगत जी कह रहे डेफिनेटली भाई प्लीज टेल मी वेयर इज द वेबसाइट नेम वेयर आई कैन बाय द टिकट, गुड रीजन टू विजिट न्यूजीलैंड, आई विल ब्रिंग सम ऑफ माई फ्रेंड्स विद मी। मंगत जी है कहाँ?
0: मंगत जी यू आर नॉट इन न्यूजीलैंड, आई थॉट कि आप क्राइस्टचर्च में हमारे साथ है। आप जहां से भी भाई जहां से भी हो, थैंक यू फॉर सो मच जॉइनिंग अस।
1: रिक्का नारायण जी हंस रही है, सोनी शर्मा प्रकार अप्सरा वेयर आर यू?
0: या एग्जैक्टली अप्सरा वेयर आर यू? शी इज मिसिंग टुडे।
1: जी कल आपने प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया नहीं धवल जी को बताने को ना हमें, ताकि उनको पता चले हम एक्चुअली में उन्हें आज सुबह याद कर रहे थे।
0: अच्छा,
1: राइट
0: तो आप डायरेक्ट सीधा रहो रहो उसके इवेंट के बारे में बात कर सकते हैं।
1: इवेंट के बारे में बात, धवल भाई तुम्हें पण गरबा ले आओ ना यार प्लीज। लाइक वी मिस द गरबा दैट यू गाइस ब्रिंग अस।
0: कोई इवेंट नहीं मिलने वाला है। चले हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं, विमलेश विनय प्रसाद जी, रितु जी आज पीपी प्रोडक्शन क्या हो रहा है?
1: पीपी तो काफी बिजी है आजकल,
0: त्रण इन गुजराती,
1: त्रण
0: अवे फ्रॉम त्रण। चले इस गीत में काफी दिनों के बाद तेरी बातों में ऐसा
1: उलझा,
0: दिस वाज द ओरिजिनल सॉन्ग फ्रॉम राघव एंड दिस यूज्ड टू बी द फेवरेट सॉन्ग ऑफ वन ऑफ माय वाय से पहले जो लेटर आता है
1: रिक्का भाभी, रिक्का भाभी सोनी दी आप लोग ले जाओ इनको, आप अपने घर पे रख लो इनको।
0: हाँ रिक्का के घर पे जाने में फायदा भी है।
1: क्यों सोनी दी के घर पे जाने में नहीं है?
0: नहीं
1: क्यों
0: समी दे वाला।
1: नमस्कार। 96.9